इसे ऐसी तान जोखी बगलों ना मतलब इसे लंथोक चुबा लोई चली आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग ताबीरसी रेडियो क्लास चनी यंखे मातो शुभ तंकर क्लास सेवेन मणिपुरी लड़िक लाइशु लेशन सिक्स थर्मसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुरी तेंबांगलों ना पुतोक चुबा थोरमनी

0: 이 하이는 타자나르글리 베나보 뽕마이 나트라가 마루 어마디 세징 하이나 차룩 아니 톡나 카이독리 아숨나 베나 마루다 띵리바 사마이다 베나 세징다 띵리바 사마이나 렌두나 눙시바 마코나마 톡한바니
1: 가람바 마탐다기 베나 감도우나 가나나 부톡람바노 하이바 와리와 콩 아이바 오이나디 탱나드리 अदुम नदी ओइरगा मैतै अहलमल सिंगना लाय हाक तक तक गिसि नरकलबनी हाइन थाजनै अशुमन फाव थाजनै मदुदि पेना चेजिंग अशिना लाइनिंग थौनी इपागी मशकनी अदुगा मरुन लैमरेलनी मालेम इमागी मशकनी मरु अमदि चेजिंग अनियशिना लेंगली पाली बताइबंग असि सेमलखिबनी हाइबगी वाखलोल अम लेरकली
0: Mama ngai ngalingai matamda pena maru asi khongdrum ariba akangbadagi semba tumbada sem sarami hai mathangda wagi waru da huttuna sanaraki waru na saba pena bu waru pena haina khangnarami thengtharak laba matamda di yubi maru ki tangkhayamana pena maru oina sem chanare Pena maru ki mamai da ting liba mamai sibuna pungmai hai na khangnei.
1: Pena gi chaisi ngasi, ngasi di ahang khudam hairap maan na koolaga si jindare. Ngalli ngai da di urai rom laba haiba upal amagi masha ushaan kondu na sharami hai. Chaisi ngi akonba yot ki charuk sida sharik macha macha mayam ama topsinduna nikpada jiao jiao lauba makhol thok nanaba siemi masisu ngalingai matamda di nongsrik haiba pambi amagi mahai oina sijinarami
0: thengtharak laba matamda penagi sharik macha si senjengna haiduna saraga sijinarakhi मदुदकी सेनचारिक हाइनसु खंगनरखी हाइरिबा सेनचारिक असि मणिपुरदा अहेबम जुमनाक छागैना सानरखी थेंथरक लबमतम फाओबदा मखलसिकी सारिक हाइरांगोय थोंगी अहेबम कोलुक्की नुपी ओइबिसिंगना लैमी तमदुना सानरमी पेना सेजिंग अमदा सारिक मचा चामा छुपन निपान हापने
1: पेना मरु अमदी सेजिंग अनिमक्ता तंगाई फदन हाप तब यादब मरु ओइब मचाक्ति शामई हायरिबसिनी शामई हायवसी सगोल की ममई द होब अशांग बमतु अदुनी सैजिंग द तिंगलीब शामईना मरु द तिंगलीब शामई द हंगत हंदा लेन बमतम द पेनागी नुंगसीब मखोल असि थोकलीबनी अशुमना लेन बमतम द मखोल हेन नुंगसीन नबगी दमक Amadi hau nana bagi damak ucan marekna samai singtu da taktuna langtrik langhalli.
0: Chaukhalak pa matangi awon bagi matung ina ngasidi chagol samai gi mahutta violin na chingbada sijinariba polyfiber oina sijinabasu yauri. Adum na di oiraga polyfiber dagi chagol samai na thoidok hendok pa magun amadi lairi. Madudi chagatlak pa amadi तोई न सिजिन नरक पदा पॉली फाइबर दी मरिल चलगी अदुगा सगोल सामई दी मरिल सुमचत चत्ते मशीनी
1: मैतई खुनाई की चत्त बिदा पेना शक पकोंग बसिंगी तोंगान ब फिजेत लेटिंग तोप न लेरी मखोई न मापान चंदबा अंगों ब फजोम शेरली कोयेट अचो ब येरली इनफी अंगों ब इंदुना फम्सक सही अदुबु कनागुंब लैबाक निंगथौगी मना मथुम फंगलबदी अशंगब मसुगी रेशम फुरित खुदांग ककपी लिप्पा अमदी खामेन चप्पा फयोम सेरपयाय मधुकी सुमथकता खुदांग द खुजी पाम्बोम द पिथ्राइन साब पाम्बोम फाबी कीबयाय सदनै
0: मणिपुरदा नुपा सिंगतना पेना खोंदुना सखनरकलीबा इसैसिङा सिकी छैहेक मखल कयामुक लैरी मधुदि हेपली थांगये हेपली पाबोट सिकपलोन कालेन चैजिंग नत्रगा चैजिंग छैशक जात चंद्र नत्रगा जात छैशक अयांग लैमा छैशक खुलंग इसै छैशक लैमरोल छैरोल नत्रगा छैशक हाइरिब सिंग असिनी
1: पेनागी सिजिनफम असि मैतै खुनाइददि ओंथोक न पाक्सा

थरम संदोक तुने तहन जरीबा से आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल देगीनी हाउसिक पुंफा मसिदा संदोक चरी अतोपा मंगल दा माही मसिंगे लम्दा म्यूजियम की थोड़ांग हाईवे रम मसिदा इम्फाल की कंगला म्यूजियम दा एसिस्टेंट क्यूरेटर ओरिबी लोंगजम लिली चागा उन्नदुना वरी साबगी अहान बशरु उन्नबी गदबा केनी कोंकाम थरम पुथोपा थोकचोम रेनुबला

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: मणिपुर टेक्निकल यूनिवर्सिटी टागेल पार्ट इम्फाल के एकेडमिक सेशन लिस्टिंगनी कुंतरुक कुंतरेत के सिविल इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अमटे मैकेनिकल इंजीनियरिंग दा बीटेक कोर्स तमन बगीदमक क्लास 12 पास तौरबा जी एग्जाम थाख्रबमदी थाहौदब महिरुई सिंगना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म थाजिन बयारगने फॉर्म लौबा अमदी थाजिन बगी अरोइब मतमना जी एग्जाम थाख्रब सिंगिना मेगी तांग 18 जी एग्जाम थाहौदब सिंगिना मे कुनमंगाने हेन अकुप मरोल गिदमक यूनिवर्सिटी गी एडमिशन वेबसाइट www.mtuadmission.in नत्रगा मोबाइल नंबर 9362204552 दगी खंगबी बयागने एमबीए कोर्स तमन बगिदमक तदी तोंगान ब नोटिफिकेशन थोलक पंगाई बियो।

0: मार्केट के बारे में क्या
1: परफॉर्मेंस का बोलो
0: बी द फ्यूचर
1: मार्केट ट्रेंड देख
0: सुनने में आएगी
2: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
1: माय प्रेडिक्शन इज
3: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
1: मेरे दोस्त ने बोला
4: देवी जी की सुनो
5: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें

0: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
1: सॉरी,
0: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
1: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
0: मतलब?
1: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
3: मार्केट के बारे में क्या?
4: परफॉर्मेंस का बोलो।
3: सी द फ्यूचर,
4: मार्केट ट्रेंड देख।
3: सुनने में आया कि
5: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो।
4: माय प्रेडिक्शन इज
6: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन।
4: मेरे दोस्त ने बोला।
7: देवी जी की सुनो।
8: अब अच्छा लग रहा है ना? लगेगा ही, हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है। आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो। म्यूचुअल फंड्स सही है।
2: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: 口是他个么的老子，是他老子不的来十八道我说不要的，弄发到是他么看个老百姓说，么姑呢可都么他的不拉破个嘞，俺俺的比如不的啥比如呀不的来了的，拉破都硬硬的呢，弄空的包个，看来他不到里边是不可以弄。मियाम लाय द कपी रद्रपति कली के ब्राह्मण ने कोई दी करम ने हिंदू री बो
1: करी नो गया लाय से बादी तो बिदे दना मुरम मुरम छोली बदु बो
0: यू ने तो मिनु बो होगी छिदे तो रुसी महुक सा के क्या खेने कर बम थाई ने दी पाय पुसिंग ने नारो ये ओ पांजी द तत्व ने कुछ ये अंगला का प्रतिकार नहीं है जो लाय द पोते ही कटपा सिद्धान सिंह बा नो मत लेपते न तंग रम अदु बो होगी ती कदाई खजिक तंग नारक पता डॉक्टर द चले हा डॉक्टर ने चीये बड़े हिदार वांग से ये न फार्मासी दे वो न सीधा तुम चकरे सीधे बु कल ये ब्राह्मण ने कोई करी चाज में हिंगे दो दिनों खंग रहे
1: हायो ऐ कोई की ऐ गा की वाता सी दिने नोक तुम नोक आ तो दी डॉक्टर सी ऐ गा द दी एक न बता रहे
0: ने नत्ता दे न कोई न नत्रो सीधा खरे लाग के दबा श्राधन सिंह में कर्म खरा चत्तु ना हिंजग तो ब्राह्मण की संपाम दा दिस्ती पीसन दुन ठिंग ही बजा
1: अदु दिया गया सुनार बदी डॉक्टर की हिदा का मत जाबी रुनु
0: कैसे वो इचार दोल बा कैसे वो इचार दोल बा इपा आय पुने धनंबा आयु ब्रेड की हिदा की आमले ही कहीं ना
1: ये अया अदु दिया कारी गुंबा पुक्ता का नुंग ले देना ऑपरेशन तो बता रा बदी डॉक्टर थाजे दबनी ना होराई ने लिए लगा बीर चार
0: कैसे वो बगी पुक्ता होराई ने लेन के दोरी बनो हिदा चार का नुंग दो अदुम तुम जे खीनी दा
1: अदु दिया गया किसी दी सीधा लाग तब की शाबी दी माने ने
0: नत्त दिया सारी बुलाई संग सिबु कैसे उन्हें बुलो है बा
1: ये
0: हाँ हाँ सिबु सिनेमा होलो मियाम के आवान आ कुक ना बा लाइनिंग लाइन सुन ताऊ रगा पोट सही कट ना बा मफ़म ने से
1: ओ अदु वो रगन ने ऐ गा ने यम थोंग खुदिंग चतु ना सीधा थी लगना ना बाटोन है था बीरु रो अदु ना सोई रो ये
0: क्या अदु आना तीन है तुम भी ऐ ना बाटोन था द्रव सु मसा ना खंग ना सीधा दो मको सु नो मगे अम अम दे छिलक पे आई देना
1: ए ए
0: नती ब्राह्मण ऐ कोई होगी तू लाय की मरण चाब तो तू ना संपोट खोए रगे हिंगने बा होने का तरह है बा
1: क्या
0: अ तू तो रब सु आ ऐ गा चाब तो संपोट खोए रे है जो वा वा नोंग ने बिगे तो उड़ी बनी ने
1: ए ऐ गा ना संपोट खोए बिरुद रब सु ने दे बा कर्म ने चिंग बगी चाक थोंगी थोंग चाक तू ना बुझा बुझी तो तू ना हिंग बे आई कहीं नो
0: होगी तू कदा जगी देव कर्म की चाक खुम नोने थरानी तुम भी
1: ए बमोन में या मम्मा चाक थोंगु चन्ना रिशी दिया गया
0: ए अदु वानते तुम भी नंग सुखंदु ना मुटंग येंगो हवजती डॉक्टर लाइरबनी ना मी सीबे की चांसो हंटा दे मऊ शादी कोलेरा टाइपर नो मुट कांग दे मिसी मीना की कर्म सिना ममा ना जदी है खा हिनो मजा सारे के नुक्सा यारगा इरुप तुना अंगांग सिंग ने साने रे मी अदुबो हवजी की अंगांग सिंग दी सिंग लेबनी ना तौ किदरे मसी दे बुलाई मरन चार के हिंगे दोरी बा ब्राह्मण ने कोसीबु खनबे दे लूरी है बा
1: ไอ้แกมีเนต้าครับกันเนี่ยกะดีไฮนักขี้เนี่ยตับหนังหางบีโอไอ้แกกะดีกุมบะต้าขี้ลาขี้บะทกละบดีเคทรีมายามชิงอาชินะไอ้แกฮานะชิบีโรกะรมกิจักคุมโดไอ้ข่อยวยเนทงเจระเกไฮราบดีกัมดอง
0: เนี่ยฮานะตอรมบูตอรมีไฮเบนีมาสิดะกะดีไกบะไลบะเกเนทอรานีตอมบี
1: ฮอยเนี่ยไอ้แกมาดุชุจุมนีบะนีเนมีนะกะจินชิลักปะสิดะบราหมณกิสินพัมตอรกะหิงกะนีโดไฮดินะหิงลิบะไอ้ข่อยชิชุเนวะทงละลูรีได้แก
0: ไกโดยเดวกรรมตัวน่ะทอกเตให้บักคังอะดูนงพาดกลายดปอดใจกะบะดดิลัยยามดรบสุไปซาดิคระยามหลุดนะ
1: โอลงนิงมลบสุเนี่ยเรียกตุนะตัวอีให้บะว่าไลบนี่กวยแก
0: ลายมรันบูบราหมณะลุดรบดิกะนานะลุกะนี่ตอมบีปะซายอกดรบดีมีไอ้ข่อยเจยิมบันชัดดีอุยดีเนคันบะนี่นัตตินุมินีนี่ซะราเฮเลบะดบูนังไกกะนุนชินะบะยาคิกะตระไ
1: หเอไอกะกิวะตาสิดิเนมะวงกะมะนี่พระภูมหาเทพกะอิมัยบิมะดุรกากะอะตุกวานะยุมบานมินะระบะชูนงมะตะคะไนตะดิยานะยานะบะชูมินุมินะระกะตุมเลมินัย
0: กะรีกะนานะมหาเทพกะดุรกากะคะนะดิไหริบะ
1: ไอบุคะนะบะกิวะรีดิตาคิดริไดกะ
0: เอ้ยพระภูมหาเทพนะกันจาทักขิบะโตइमा भी मैं दुर्गा का खन्ना बता की नी ने तुम भी
1: आई मैं दुता दिया कोई क्या
0: खंग रब जाएंगे ना हंगो
1: वो अमुक तो ताक पी हुआ क्या
0: हाँ हो अदम ना तानिंग ना बजे ली रह गया तार
1: ली
0: अरु भाई प्रभु महादेव ना लाई सुमनिंग ना लाई खर बता चा दबदी या दबनी ना इमा भी मैं दुर्गा ना प्रभु द हंकी करीनो प्रभु तब की सुविधा ना लाई सुमनिंग ना लाई छुई भी

0: ग्रीन रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, एजुकेशन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन मखन कयानो लेबा आमा साखत पर तसंग लिबसी बोय बुङो
1: असुम मनी एगे असुम मनी रिवॉल्यूशन हाइबसे असंग ब उहै आमा मुन बङाय बनि मदु करम मतम द मुन गद गे हाइब दे खै खंगते अदुबु मुल्लग मियाम पुन शमिन नगदोरी बनि ने के।

0: आकाशवाणी इम्फाल मोरांग टीवी हाई पाव पाजरी अहमद मरुब पाव लेडी विद द लैम्प हैरगजु खंगना फ्लोरेंस नाइटिंगल की मपो नुमितपुंगासी मालेंगे नर्सेस डे हाइना पालन तौरी एनसीसी ना सिजिनब माइक्रो लाइट वायरस आईटी एयरक्राफ्ट की मरम्द हेन खंगनब ट्रेनिंग कैंप अमासी इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट हौख्रे डॉक्टर हिमंत बिसा शर्मा असम की मुख्यमंत्री होना वासक लौख्रे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना नोंचुक बेंगल की हानगी मंत्री सुजीत बोस थब लौब की वाथोक मरी लेना फारे मालेंगे नर्सिंग नासी पांथोली कमची चाही हिरम की नर्सिंग अखोगी तुंग लंबी नर्सिंग शक्ति पीसी मयोबगी पुंसी कंसी हाइबसिनी लेडी विद द लैम्प हाइरगजु खंगनब फ्लोरेंस नाइटिंगल की मपो नुमितपु चाही खुदिंगे इंटरनेशनल नर्सेस डे हाइना पांथोक्तुना लाकली मणिपुरदसु सरकार की अमदी लनाई संस्थान सिंधुना मालेंगे नर्स की नुमित पाक्सना पांथोली नुमित असिग मरी लेना राज्य सेगी एमएलए सिंग याउना मियोय क्याना याइफा पाउजल पिरकली मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान सिंगना महाक की पाउजल दहाई कुमसी चही की हिरम असिना नर्सिंग हक्सेल की लमदा हेना मपांगल कंखत हनब थौदांगबो मयेक लाना उल्ली मांग हाई नर्स की नुमित लाकुदा सिनफम असिदा लेरिबा सिंगु मतम पुंबदा शक्ति पीबता नत्तना मखोइबो पुंग थौगतबा लोइनना मतेंग पांगदना मखोइना पुंसी कन्नबा समाज असिगिदमक लौरिबा थौदांगबो मतम चुपदा इकाई खुमनबा उल्ली मालेंगि नर्स की नुमित द ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन जेनिम्स यूनिटना सिंधुना जेनिम्स हॉस्पिटल की ऑडिटोरियम हौज पांथोली थौरम राज्य की हक्सेल याइफयुम्बल विभाग की जॉइंट सेक्रेटरी स्टेट हेल्थ एजेंसी की सीईओ शामीम महमद शाहना अथोब मिथुंगलेन सरुक याखे नुमित असिग मरी लेना जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जेनिम्स हेल्पिंग हैंड्स फॉर पीपल्स मणिपुर सिंधुना लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगल की मिंग तरुक सुब वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप पांथोखे कैंप अदुद मियोय निफुरोम ई दान तौखे थौरम अदुग मरी लेना जेनिम्स के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट प्रोफेसर के एस लोकेश्वर हाई नर्स की सिनफम लेरिबसिंगना अनाबसिंगबो कयागी मतिक नुंसिबगी हाइबसी हाइमनब थोकलोय अनाबगी सेवा तौबखक नत्तना मसागी ई फाउब दान तौदुना मियोय कयागी पुंसी कन्नबगी वाखलोंद ngasigi थौरम असी पांगथोपनी माकना हाय
1: अखोइगी नर्स हाइब पोचे अनाब सेवानी अनाब सेवा हाइबजी मफम खुदिमक्त लै माबो लु नाना थम्बा लैना अदिगि चंगनदब अमसुंग मखोइद फौरैब सेक्रिफाइस से मंगोंदि इजि पिरगा अनाब कना लैजिद्रब कनागु हेल्प लैद्रब मि पुं खुदिमक्त इ अवार्ड पर मतमदा पिनिंगबा मखोइगि एक्सट्रीम सेक्रिफाइस तो नसमगि कथोपगि वाखनो लाखसे मसि मखनि मखोइद फौरप एखोइनि इंजनबा ओमिन इंजनबा नति मसि इट इज देयर ओन वोलंटरी विश एंड डिजायर मिपुम खुदिमक ngamdabsu yai adubu angamba mipum khudimak ti akun encourage toni ngasi pirib pandam di ekhoi nurse oina service taw leiba taraga su ekhoi su ipiba ngami adun mitop su mipum khudimak su help tawna be damakta voluntarily donation taw biyo haiba message pinin
0: अकन सेक्चल थौरंग लोना नोमद तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंह पुबा गारी निफुमाथोई इम्फाल हिदमक ngasi ayuk jiribam thadokre अखोगी जीरीबाम पाउमी आथें पीसोजन पुलिस के पाव पलदन हाई ngasi इम्फाल थादोखी गारी सिंह अदुगी मनुंग द एलपीजी पेट्रोल डीजल अमसुंग केरोसिन पुबा ट्रक कुंट्राउम देनी सिमेन अमदि अते पोलम सिंह याव गारी निपान ngasi अयुक पुंग तरु खरे हेलपा द्वाइदा जीरीबाम थादोखी बनी नेशनल कैडेट कोर माइक्रो लाइट वायरस आईटी की मरम्द हेना खंगबगी ट्रेनिंग कैंप इम्फाल की इंटरनेशनल एयरपोर्ट ngasi दगी हौख्रे ट्रेनिंग प्रोग्राम अदु ngasi हौनबी मतुंग इना राज्य की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अनुराग बासपाइन हौदोकी कैंप

दोस्तों, आज मंगलवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है किक। आवाज़ दिया है सलमान खान और श्रेया घोषाल ने। तो सुनते हैं ये गीत।

दूसरा गाना आप सबके लिए पेश है रंग दे बसंती फिल्म से। आवाज़ दिया है के एस चित्रा और दलेर मेहंदी ने। बोल प्रसून जोशी के हैं और संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

आइए अब सुनते हैं क्यों हो गया ना फिल्म से साधना सरगम और उदित नारायण के युगल स्वरों में एक गीत। बोल तैयार किया है जावेद अख्तर ने और संगीत से सजाया है शंकर एहसान लोई ने।

श्रोताओं, आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के FM संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बेबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं बैड न्यूज फिल्म से करण औजला की आवाज में एक गीत। संगीत निर्देशन भी करण औजला के हैं।

आइए अब सुनते हैं परम सुंदरी फिल्म से कृष्णकली साहा और सोनू निगम के युगल स्वरों में एक गीत।

श्रोताओं, आपको कैसा लगा हमारा आज का यह कार्यक्रम? मन तो नहीं करता आप सबसे विदा लेने का, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं। लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम महफिल प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतज़ार कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

ख़दोंगे अनिश अनिश शुभम दे अरोई बेदा लोकत चरी बसी माधवी फिल्म देगे उदित नारायण के नाइटों कंजल दा लाइमियम बंकर शर्मना सेरिंग बा सगोल सेम तिजेंद्र ने सेरांग विषय नी खुदोल दम चरी

आकाशवाणी फल मोरंग टीवी ने पाव पाजरी मे अहमद पांथोखिब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ना लौबा नीट यूजी लिसिंग अनी कुंतरु की परीक्षा दु चनररोय हाइरी एनटीए ना थोकप चेरोल अमगी मतुंग इना तोंगान तोंगान बे एजेंसी सिंगना पिरक पर रिपोर्ट सिंग दे युफम ओइदुना परीक्षा अदु कैंसिल तौखिबनी एनटीए गी मतुंग इना मे अहमद पांथोखिब परीक्षा अदु असोइब खरे याख्रे हाइबगी पाव फंगबदगी सेंट्रल एजेंसी सिंगदा हौखिब मे नेपाल द थिजिनना बसिनकिबनी हाइरी तोंगान तोंगान बा एजेंसी सिंगना थिजिल्लाबा मतुंगदा पिरक पर रिपोर्ट सिंग दे युफम ओइदुना परीक्षा अदु चनररे हाइना खंगनखिबनी केंद्र सरकार ने जो थोदोक असिगी मतांगदा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द थिजिन्नबा सिनाख्रे हाइरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना नौना परीक्षा तौनबा मतम लेबलगनी अमदि परीक्षा अदुगिदमक एडमिट काचिंग करमना फंगनगदगे हाइबगी मतांगदा अथुबा मतमदा खंगलकलगनी हाइरी महिरोय अमदि ममा

तरुण सिंधु तुने ताहंजरी बसी आकाशवाणी इम्फालगी एफएम संगाई चैनल देगनी पुंफो मसिदा हुजिक पुदुने लाक्चरी खोंचेत सिगी वारीनी नसिगी तरुणदा एथलेट्स आरके जयकुमार सिंह उनदुना वारी शाबा रुई बसरुक ताहंजरी उनबी गदबा संगलाकपम देवीचंद्र शर्मा तरुण पुथोकपा नोंथोंबम रोमा

0: आकाश फानी फान हौजिक मणिपुरी दा मरुवे बपाव ताविरिसे
1: आकाश फानी फान हौजिक फाव की मरुवे बपाव मे अहुम दा पांगथोकीबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने लौबा नीट यूजीडी सिंग अनि कुंतरुकी परीक्षा दु सनररोय हाइरी परीक्षा दु दा असोइब खरे याखरे हाइबगी पाव फंगबदगी सेंट्रल एजेंसी सिंग दा हौकीब मेनि पार दा थिजिनब सिनाख्रब मतुंगदा तोान तोान एजेंसी पीरप रिपोर्ट यूफम परीक्षा अद चलरोय खननी लेडी विद द लैम हैगजु खब फ्लोरेंस नाइटिंगल की मपोक नुमितपू मालें की नर्स की पालन तौनरी कुंसी चाही की हिरमना नर्सिंग अखोई तुंग लम्बी नर्सिंग शक्ति पीसी मोब की पुंसी कंसी धनमंजुरी यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ पालन तौरे प्लांट बायो सेक्यूरिटी फॉर फूड सेक्यूरिटी हाब हिरम असीद पांथोप थोरम अदुग मरी लेनना मही मरों अमदी मना मसिंगी एग्जीबिशन अमसु पांथोके डॉक्टर हिमंत बिसा शर्मना अनिरक सुब ओइना आसाम की मुख्यमंत्री ओइना गासी वासक लौखरे श्री हिमंत बिसा शर्मा लोइनना मंत्री मरी अमसु वासक लौखे तमिलगा बैटरी कजागम टीवीके की एमएलए जेसीडी प्रभाकर बु तमिलनाडु विधानसभा की अध्यक्ष ओइना खनखरे दोल असिगी अतोप एमएलए रवि शंकर बुना उप अध्यक्ष ओइना खनखरे हयें पांथोकदब विधानसभा टीवी के ना लुचिंब सरकार की फ्लोर टेस्ट तौरगनी केंद्र की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हायरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिसिंग अनी कुन्ना ममा लोल द यूफम रिसर्च लेबाक असिगी अरिब मतंगी लक्षिंग पुकैसिंग थिजिनब अमदि मही मसिंग तंबद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिजिनदुना मांगलोमद संगसिनब ममली अमसुंग पेट्रोलियम अमसुंग नेचुरल गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हायरी नोंसुप एशिया की वाथोक मरक्त भारत ना चाकथों गैस पुथोपगी चांग हेंगत हनब ममले पाव लुइजरे

थोरम संदोक तुन तहन जरी बस एकास्वानी मिफाल की एफएम संगाई चैनल नी हाउजी मखा दाब थोरम संदोक पा हुजे दिंगे चैनल असिदा नसी नुमिदांग मदि हयंगि थाम जरी ब थोरम सिंग अमुक तंग सबलब न निंग सिंग जरी निंग सिंग जबासी हेक लोय बगा तहन जगनी नहरोल की खोंजेल थोरम मसिदा थाम जरी टेलेन हन की थोरम बा थोरम बसी की दमो रतन कुमार मेमोरियल स्कूल का कचेल हाइनो खोंनेम बिदा लयबा महिरोय सिंग उनदर वारियो ताई साबा इंटरेक्शन प्रोग्राम तहन जगनी पुंग तरुक मिनिट निम्फु गसिगी खुंगंग की थोरम दा थोंगाम गोसे मिथे की खुनुंग इसे नेफे युम्बाल दा युम्फा मोइबा लीला मच

0: 아가수안 인파알기 FM 상하이 채널 다비리 부분 먹보 아무거나 다람 나옥서리 더럼 선독도나 다한자리 바스야 아가수안 인파알기 FM 상하이 채널 기노미당이 더럼 빠링니 아우지노미당이 뽕따렛 메리님 품응아 사키안야 카이따렛 쯧키바글로 이나나 다비르시 마통기 오품다 말렘기 너스 기노미나 락바다 아이바 라스쿠마르 사나톰비
1: ब्रिटेन की संगनायर भी पुक्सेल सौबी मकुट्टा लालटेन पाइबी फ्लोरेंस नाइटिंगल की मफोक नुमित मे की तांग तारा निथोयसीद मालेम की मफम पुमनमकता इंटरनेशनल नर्सेस डे पांगथोक नखी मणिपुर मफम कयाद पांगथोक नखी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस न कुमसी सही की थमलीब पांदम दी अवर नर्सेस अवर फ्यूचर इम्पावर्ड नर्सेस सेफ लाइफ हाइब असिदनी फ्लोरेंस नाइटिंगल लेडी विथ लैम्प न कुमजा लिसिंग मसानिपान यांखई हुमदोइदगी लिसिंग मसानिपान यांखई तरुक फाउबद थोखिबा क्रिमिन वार मनुंगदा लानफमद सोकलब सिफाई सिंगमदि लान नंगलब मियामद कथोकप अमदि मिनुंग सिगलोइनन लौरम बथौदांग सिंगदुबु इकाई खुमनब ओइना माकी मपुक नमित असिदा इंटरनेशनल नर्सेस डे असि पांगथोक नरखिबनि क्रिमिन वार अदुदा फ्लोरेंस नाइटिंगलना अशोक अनादा अमदि मियामद हाइजीन पेशेंट केयर अमसुंग ट्रेनिंग कया पिरंब अदुदगी नसेगी मॉडर्न नर्सिंग असि लाखिबनि महाक्ति मालेम की लम्यान बीनी नर्स यामन फै अखोई की चलब पुनसी खोंचत नर्स सिंह चाउरब थौदांग लौबीरिबनी नसी की खुनाई सिदसु तिंजंग काजिंगदब खुनाई अम ओहेलकपद अचौब मतें ओइगदौरिबनी मतम से की ओइनदी अना लाइन की लमददी नर्स हाइबसिना ममा की सकलोन लौरिबनी मसाम उ फरबदी पुमनमक फै हाइबगुमना नर्स सिंह सु मसाम उ फानबासमक यामन मरु ओइ नर्स सिंह लेप्तन मथौ पांगथोई मतम सांग मथौ तौरिंगैद मपुकनिंग नुंसिबा मियोई कयागी पेंदबगी वाकत सुमायोक नरिबनी मसिदा सुनतना फिबम कायरबा सोलबा तमथिरबा लौनगनब लैना मरक्त मथौ पांगथोकलिबनी मरम सिंह असिना अइखोइन नर्स सिंह बु सौगतपिबा मखोई मसान मसाबु सेक्शन थौरांग लौजाहन्दुना मसाम उफानबा मसु इकाइ खुमनबिरबदि नर्स सिंह नसु अहेनम केयर लौबिरक्तुना अनाब कयागी पुनसिद साफगदौरिबनी अमसुंग नसी की खुनाई सिसु तिंजंग काजिंगदब खुनाई अम ओहेलकपद अचौब मतें ओइगदौरिबनी हाइथोई सिंथोइरब नर्स सिंह नुमित खुदिंग मियोई कयागी पुनसि कल्लिबनी नर्स न मियोई अमगे ख्वाइदगी खुदोंग थिरब मिकुप्त सेक्शन थौरांग लौबिदुना मखोइना अनाबगी इमुंग मनुंगबु पुंगनिंग फाथबिबा डॉक्टर सिंगी मतें हाकथेंगना पांगबिबा अनाब सिंगबु पुंगनिंग थौगतपिदुना अमसुंग पुक्सेल चाउना मिनुंग सिग लोइनना हिदाक लांगथक अफब चिंजाक अफब पोक्ताक लोइनब सर्विस न हेल्थ केयर सिस्टम बु लभनदबगी मगुन ओइगदौरिबनी हाइबदी नर्स हाइबसिगी मगुन हेल्थ केयर गी लमददी कम्फोर्ट रिकवरी शक्ति अमसुंग ट्रस्ट पीरिबनी मालेम की ओइब पेंडेमिक लाक मतमद मतम मतम की इरांग वाथोक लांथोकता अशोक अपन यौरपमदी लाइबक थीब एक्सीडेंट सिंब थोरपद लमदम सिगी नर्स सिंगना चाउरब थौदांग लौरिबनी हेंदोक थोयदोकप मगुन अमसुंग कथोकपगी दमक नर्स सिंगिसु इंटरनेशनल एंड नेशनल की ओइब मना मथुम फाउब लैरिबनी इरमदम मणिपुर असिदसु मतिक साबी लैबाकना सखंग बिदुना लेमजनिंगाय ओइरबा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड फंगलबी इरोम चंद्रबला अमदि लैमपोकपम रंजिता पनबयाय तुंगदसु लेमजनिंगाय ओइरबा अवार्ड कया लमदमसिग सरुक थुंगलखिगनी मरमदे इरमदम मणिपुर असिदा मतिक सारब नर्सिंग कॉलेज इंस्टिट्यूट कया लैरे अमसुंग ट्रेन तौरब नर्स कया लेप्तन पुथोकली अमरोमद नर्सिंग मदर मसाबु सेनजब यंगचिनजब नर्सिंग प्लान पाबीब यंगचिनजब सेनब अमदि नर्सरी टीचर अपिकप अंगांगबु सेनदुना ताकपी तंबीब असिनसिंब सिंगसिग नर्स अमन लौरिब थौदांग सिंगदुग मवोंग मतौ मिटयंग खेनजरबसु वाखलोंदि अमतनी अपिकप अंगांगदुगि पेरेंट सिंगना नर्सरी टीचर अदुद वाकचरकप अपेन पेनद थोकतब नति अदुगुम लदना हॉस्पिटल लसु अनाबगी फैमिली नत्रग अनाबदुना माबु सेनबिद्रे थवैबिद्रे हाइना नर्सिंगद पेंदब फोंगदोकप मतांगदुद वाखल तानतबदगी खनसैनब थोकतब नते नर्सरी प्लान तौरिब मियोइना सेनहौदब मिकुप्त पाम्बि सिंगदु अमांगता थोकपगुम नर्सिंगन अनाबबु सेनहौदब मिकुप्त खुदोंथिब थोकप फाउबु याय अदुबु मतमगि चनबिद यावनदुना कथोकप खोंथोक खोंफम नुंसिबना मथौ ओइगदब अदुबु तुंगोइनरगा नर्स की मगुन चेंदब कयासु सिनफम सिद यावदब नति

0: Tanzakiba gazal si busesakiba pangkasudas. Matang natabira si Kumar Sanu nasagpa gita ba.
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो, वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने और हर श्रृंगार लेकर आज आपके साथ है अर्पना प्यार भरा नमस्कार

नमस्कार मेरा स्वीकार करें। तो चलिए आज के हर श्रृंगार को शुरू करते हैं मैंने प्यार किया फिल्म के गीत के साथ। वक्त मिला लें 10:31 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार।

जी हाँ, मौसम तो दोस्ती का आता है और उसके बाद जो बात है वो पहुंचती है धीरे धीरे मोहब्बत तक। अगर आप अपने किसी खास इंसान को याद कर रहे हैं और अपने दिल की बात बयां करना चाहते हैं तो दोस्तों एफएम गोल्ड आपके पास और आपके साथ है ना हमेशा। गीतों के माध्यम से दिल की बात कहना यकीन मानिए बेहद आसान है। हम किसी से कम नहीं फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज़।

बात चांद की हो चांदनी की हो रात के अंधेरे की हो बात हो दोस्ती की या फिर मोहब्बत की तो बात कहना बेहद आसान हो जाता है गीतों के माध्यम से ये तो आप जानते हैं लेकिन कभी-कभी खामोशियां बहुत ज्यादा नखरेबाज हो जाती हैं बड़ी नखरेबाज हैं खामोशियां तेरी पास बैठा हूं पर वो टूटती ही नहीं अंजाम फिल्म से अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत

10:48 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंगार और ये गीत है लम्हे फिल्म से लता जी और हरिहरन की आवाज में आज आपके साथ हर श्रृंगार में है अर्पणा

दिखने वाली बातें बस बातें नहीं रहती जब हो जाता है प्यार इस दिल की हर बात जरूरत बन जाती है अब बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं हमारे दिल में आते हैं जैसे तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं तेरे चेहरे की वो खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं हर लम्हा तेरे साथ गुजरे ऐसी तकदीर कहां से लाऊं मैं मांगती हूं हर जन्म में तेरा साथ अब तू ही बता मेरे हाथों में वो लकीरें मैं कहां से लाऊं डर फिल्म से उदित नारायण की आवाज होगी इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार 11:10 पर होगा गीत मेरे मनमीत आपके संग रहूंगी मैं अर्पणा फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत के बाद ठीक 11 बजे होंगे समाचार

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित

0: मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवीके सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said,

गीत मेरे मन मीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है 11:11 और 5 सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं गीत मेरे मन मीत की साहिर लुधियानवी के लिखे गीत के साथ। महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज होगी, संगीत रवि का है, फिल्म का नाम है हमराज। और इसके बाद आप सुनेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी का लिखा गीत होगा, फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। तो इन दो फिल्मों से गीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है गीत मेरे मनमीत।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मन मीत। अगला गीत होगा आनंद बख्शी का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी और इसके बाद जो गीत होगा वो आरडी बर्मन का संगीत है मजरू। सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत होगा किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। इन दो गीतों का आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

11:45 और 11 सेकंड हो चुके हैं। ये मधुर गीत आपने सुना किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में। आरडी बर्मन का संगीत, गुलशन बावरा का लिखा हुआ ये गीत, फिल्म का नाम ये वादा रहा। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत। अगला गीत है भूपेंद्र और आशा जी की आवाज में, संगीत बप्पी लहरी का है, फिल्म का नाम है एतबार। चलिए सुनते हैं ये गीत और आज आपके साथ है अर्पणा।

जी हाँ, इन गीतों के माध्यम से आप भी जहाँ खो गए हैं उसे कहते हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ट्यून इन किया है आपने और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:53 हो चुके हैं। अगला गीत होगा गुलजार साहब का लिखा हुआ, आवाज है लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम है मौसम। इस गीत के साथ ही अर्पणा को दे इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न राज्य स्थानों पर भेजी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत

0: से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे से पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डा पार्टी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित रहे। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो चार अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। कगिसो रबाडा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार भारतीय महिला लीग का खिताब जीत लिया है। सेथो एफसी और सेसा फुटबॉल अकादमी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, हंसते हंसते कभी थक जाओ तो छुप के रो लो, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी, ये हंसी भीग के कुछ और चमक जाएगी। जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, जगमगाती हुई सड़कों पे अकेले न फिरो, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, शाम आएगी किसी मोड़ पे डस जाएगी, रात के बाद नए दिन की सहर आएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी, दिन नहीं बदलेगा तारीख बदल जाएगी। और अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है आंखें, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो। कैसे ही सही लेकिन कुछ ख्वाब हमें दे दो, हम उनकी कोई रंगीन ताबीर बना लेंगे। हम उनकी कोई रंगीन ताबीर बना लेंगे। आ जाओ तसव्वुर में हम तस्वीर बना लेंगे, हम शाम जुदाई की तकदीर बना लेंगे। और अगला गीत आप सुनेंगे मुकेश की आवाज में, फिल्म का नाम है आनंद।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। यूं भी नहीं कि शाम और सहर इंतजार था, यूं भी नहीं कि शाम और सहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, मुद्दत के बाद फूल की सूरत खिला था दिल, शबनम की तरह ताजोतर इंतजार था। बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, बालों में धूल पांव में छाले न थे मगर, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था, फिर भी कुछ एक रंज सफर इंतजार था। यूं भी नहीं कि शाम और शहर इंतजार था, कहते नहीं थे मुंह से मगर इंतजार था। वक्त आ चला है आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे।

0: वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसको कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने का पहला गीत फिल्म का नाम है कॉलेज गर्ल।

हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, बहुत चमकते हैं कुछ लोग पहली बारिश में, मगर वो बाद में पहले से तर नहीं रहते।

हर एक रंग सदा शाख पर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते, जो पास हो भी वही उम्र भर नहीं रहते। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा गांव मेरा देश, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

रात ने धीमे से चांद से कहा, रात ने धीमे से चांद से कहा, तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी क्यों है? चांद मुस्कुराया, मैं हर उस दिल का आईना हूं जो बोल नहीं पाता। रात बोली, फिर ये तन्हाई किसकी है? चांद ने उत्तर दिया, ये उन लफ्जों की है जो होठों तक आकर लौट जाते हैं। रात ठहरी, क्या कोई सुनता भी है इन्हें? चांद झुका, हां, जो रोशनी से नहीं एहसास से देखते हैं। रात ने आंचल फैलाया, तो आज मैं इन्हें समेट लूं? चांद ने सिर हिलाया और कहा, समेट लो वरना ये दर्द बन जाएंगे। रात बोली, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? चांद ने कहा, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शोर में कोई सच्चाई नहीं होती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है तलाश, आवाज है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें, आवाज़ है सुमन कल्याणपुर और मुकेश की।

तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उसी पल कुछ नरम लगती है। तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, तेरी हंसी में कोई रोशनी सी बसती है, उसी के संग मेरी हर घड़ी चमकती है। तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, तुम्हारी याद का मौसम अजब करिश्मा है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, उदास शाम भी चुपके से मुस्कुराती है, तुम्हारा साथ हो तो हर कमी कम लगती है, ये दुनिया भी उस पल कुछ नरम लगती है। और अगला गीत, फिल्म का नाम है आवारा, आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की।

वक्त आ चला है कि आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है कभी कभी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत फिल्म का नाम है शक्ति और आवाज है लता मंगेशकर की।

0: शरणार्थी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ वह चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में मुलाकातें जो कभी रोशनी लिखती थी घरों में धूल बैठी तो लगा वह असर कम नहीं हुआ वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए वक्त की चाल ने कितने ही चेहरे बदल दिए पर दिल में उसका लिखा नाम कम नहीं हुआ पर दिल में उसका लिखा नाम कम नहीं हुआ वो चला भी गया पर ये सफर कम नहीं हुआ आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ आईनों से उसका अक्स मगर कम नहीं हुआ और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है दो रास्ते आवाज है मोहम्मद रफी की आइए सुनते हैं ये गीत

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है बॉर्डर, आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कृष्णा कॉटेज, आवाज है श्रेया घोषाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test with the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected S.P. Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation of Prime Minister Narendra Modi's call. He urged citizens

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम हमराही में आपका स्वागत है इस्तकबाल है अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका दोस्त शमीम खान दोस्तों रात के इस धीमे ठहरे हुए पहर में जब शहर की आवाजें थम कर सो जाती हैं और कुछ अधूरे ख्वाब और ख्याल अब भी जाग रहे हैं आप सुन रहे हैं वो सफर जहां बातें कम होती हैं और एहसास ज्यादा होते हैं कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती वो पुराने खतों की तरह खुलती हैं जिनमें किसी की हंसी रखी होती है तो किसी की नाराजगी तो कहीं कुछ अधूरी मुलाकातें आज की इस महफिल में हम उन्हीं यादों के कोनों में चलेंगे जहां पुराने हिंदी गीत बसते हैं या यूं कहूं कि अब भी चुपचाप सांस लेते हैं तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही नगमे से जो शायद आपने भी कभी किसी की याद में गाया हो या सुना हो ताइए सुनते हैं उस खूबसूरत गीत को जिसे आवाज दी है किशोर कुमार मुकेश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि दिन के मुकाबले रात ज्यादा सच्ची लगती है। दिन में हम किरदार निभाते हैं और रात में खुद से मिलते हैं। कुछ लोग इस वक्त लंबी सड़कों पर होंगे और कुछ किताब के खुले पन्नों पर सो गए होंगे और कुछ किसी पुराने नाम को याद करते हुए या दोहराते हुए बस चुप बैठे होंगे। दोस्तों, पुराने गीतों की खूबसूरती भी यही है, ये शोर नहीं करते हैं, बस धीरे से आपके दिल के पास आके बैठ जाते हैं। अब जो गीत आप सुनने वाले हैं उसमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी है और वो खामोशी भी है जो अक्सर मैं ठीक हूं के पीछे छुपी होती है। आइए उस गीत को सुनते हैं।

रात जैसे जैसे गहरी होती जाती है, यादें भी अपनी आवाज बढ़ा देती हैं। कुछ चेहरे धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वक्त बीतने के साथ भी दिल की दीवारों पर वैसे ही टंगे होते हैं। बहुत अजीब बात है ना ये। कभी कभी एक पुराना गीत सालों बाद भी आपको वही एहसास लौटा देता है जिसे हम समझते थे कि हम भूल चुके हैं। अगला गीत शायद आपको वही एहसास दोबारा से लौटा दे। आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर संगीत संस्कृति और यादों का घर हर दिल की धड़कन हर मन के संग आकाशवाणी के संग यादों के रंग
1: सुनिए एफएम गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ एफएम गोल्ड 100.1 पर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है हमराही और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान

दोस्तों अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो ये बात याद रखिए कि अकेलापन हमेशा उदासी नहीं होता। कभी-कभी यही वक्त हमें अपने सबसे करीब ले आता है, जहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बस दिल और उसकी आवाज। वो शायद इसलिए क्योंकि उसमें जिंदगी भागती नहीं बल्कि ठहर जाती है, और यही वो वक्त होता है जब हमारा दिल पूरी तरीके से मदहोश हो जाता है, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ अधूरी होकर भी उम्र भर साथ चलती हैं। हम सब के दिल में कोई ना कोई ऐसा कोना होता है जहां एक नाम आज भी हल्के से धीरे से दस्तक देता है और शायद इसीलिए पुराने गीत हमें इतने अपने लगते हैं क्योंकि वो सिर्फ गाए नहीं गए हैं बल्कि वो गीत जिए गए हैं। अब कार्यक्रम का अगला गीत उन एहसासों के नाम जिन्हें कभी शब्द नहीं मिल सके लेकिन वो हमारे दिल के कोने में कहीं ना कहीं आज भी हैं।

दोस्तों, रात का यह हिस्सा सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, क्योंकि इसी वक्त दिल सबसे ज्यादा सच बोलता है। जो बातें दिन की रोशनी में हम टाल देते हैं, वो रात की खामोशी में अक्सर चुपचाप आकर हमारे पास बैठ जाती हैं। लेकिन शायद यही तो संगीत का काम है, जो हमारे भीतर के शोर को धीरे धीरे सुकून में बदल देता है। और अब एक ऐसा गीत, एक ऐसा नगमा जो बरसों से तन्हा रातों का साथी बना हुआ है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम चल रहा है हमराही और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम

दोस्तों, पुराने गीत सिर्फ संगीत नहीं होते, ये वक्त के वो टुकड़े हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। चलते चलते एक आखिरी नगमा, उन लोगों के नाम जो याद तो बहुत आते हैं लेकिन अब जिंदगी में नहीं आते। ये रात सलामत रहे और यादें महफूज रहे और संगीत हमेशा आपके साथ रहे। इस कार्यक्रम से मुझे आपके दोस्त शमीम को दीजिए इजाजत। अलविदा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों पुलिस

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम अरुणिमा में आपका स्वागत है और अभी आपसे रूबरू हो रहा है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों आज की इस शांत रात में हम साथ चलेंगे उन गीतों के जो सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं, वो नगमे जिनमें मोहब्बत भी है, इंतजार भी और अधूरी बातें भी। तो बस खिड़की के बाहर देखिए, अगर आपको चांद दिख जाए तो बस हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा और अगर किसी की याद आ जाए तो आज उस याद को आने दीजिएगा।

दोस्तों कभी कभी ना जिंदगी हमें बहुत आगे ले जाती है, इतना आगे कि पीछे मुड़कर देखने का वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन फिर अचानक कोई पुराना गाना हमारे कानों में सुनाई देता है, हम फिर वहीं लौट जाते हैं, उसी गली में, उसी मौसम में, अपने लोगों के बीच, जहां किसी ने पहली बार हमारा नाम लेकर पुकारा था। दोस्तों हमारे हिंदी फिल्मों के गीतों में यही तो बात थी, ये सिर्फ धुनें नहीं थी बल्कि लोगों की अधूरी कहानियां थी जो कभी मुकम्मल नहीं हो पाई।

दोस्तों, रात जितनी गहरी होती जाती है दिल उतना सच बोलने लगता है। दिन में हम सब कुछ ठीक होने की अदाकारी करते हैं, लेकिन रात रात किसी अदाकारी को नहीं मानती। वो पूछती है, क्या सच में सब भूल गए हो? क्या सच में अब फर्क नहीं पड़ता? और फिर कहीं दूर रेडियो पर एक पुराना गीत बज उठता है और जवाब खुद ब खुद आंखों में आ जाता है।

फिर चाहे दिन बदल जाएं, साल बदल जाएं या शहर बदल जाए, लेकिन जैसे ही वो दिन सुनाई देती है, हमारा दिल चुपके से कहता है, अरे ये गाना तो उसका था। और शायद इसीलिए हमारी फिल्मों के पुराने गीत आज भी हमें उतने अपने से लगते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ संगीत नहीं था, किसी का एहसास छुपा हुआ था।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और शमीम हैं अभी आपके साथ दोस्तों अगर इस वक्त आप सफर में हैं कोई लंबी सड़क आपके साथ चल रही है या फिर कमरे की लाइट बंद करके आप चुपचाप बैठे हैं और रेडियो सुन रहे हैं तो ये गीत आपके लिए है क्योंकि कुछ बातें शब्दों में नहीं कही जाती उन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है ठीक वैसे ही जैसे रात की हवा या किसी की कमी और उस कमी को महसूस करता हुआ ये खूबसूरत सा गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और कुमार शानू ने

दोस्तों, मोहब्बत का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद मिलना नहीं होता, बल्कि वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो बाद में यादें बन जाती हैं। एक साथ सुना हुआ कोई गीत, देखी हुई कोई फिल्म, बारिश में की गई लंबी बात, या देर रात सो गए क्या वाला संदेश, और फिर एक दिन बस ये गीत रह जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है ना, ये अच्छे गीत कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते।

परसों रात अब और शांत हो गई है और घड़ी की सुइयां 4:48 बजा रही हैं और ऐसे वक्त में दिल सबसे ज्यादा पुराना हो जाता है। उसे पुराने लोग याद आते हैं, पुरानी जगहें, पुरानी खुशबुएं और वो आवाज जिसे सुने हुए शायद बरसों बीत चुके हों।

दोस्तों, ये गीत संगीत हमेशा हमें अपनों की याद दिलाते रहेंगे। दिल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसमें एक कोना हमेशा पुराना रहता है। दोस्तों, कार्यक्रम अरुणिमा में आज यहीं तक। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अगला गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से

0: एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं, तो इन सभी मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेकिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम भोर सुहानी में आपका स्वागत है अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम दोस्तों ये रात थी

धीरे धीरे सुबह की तरफ बढ़ रही है और इस शांत वक्त में अगर आप जाग रहे हैं तो शायद जिंदगी आपसे कुछ कहना चाहती है। कभी कभी सन्नाटा भी बहुत खूबसूरत जवाब देता है, बस सुनने वाला दिल होना चाहिए।

दोस्तों आज की सुबह उन सभी लोगों के नाम जो टूटे नहीं हैं बस थोड़ा सा थक गए हैं यकीन मानिए हर मुश्किल रात के बाद जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है और शायद आज की सुबह आपके लिए वही नई शुरुआत लेकर आई है ठीक इस गीत की तरह